0: कुछ उनके सुने, कुछ अपनी कहें। आइए दीवान खाना में चलें।
1: यह है आपका अपना प्रोग्राम दीवान खाना। आपके मेजबान हैं खलील शिराजी, वसीमा आबिद और खदीजा शाह।
2: प्रोग्राम दीवान खाना में तमाम सामईन को आदाब। सामईन की अपनी महफिल में सामईन का इस्तकबाल करते हैं।
1: आज की महफिल में शामिल है एक इंटरव्यू और एक खासुल खास ऐलान।
0: लेकिन सबसे पहले है इंटरव्यू।
2: NHK के नए माली साल से हमारी उर्दू सर्विस में एक नए मुतरजिम सैयद शबर हुसैन शाह शरीक हुए हैं। आज खलील शिराजी साहब महफिल में दीवान खाना में उनका शानदार इस्तकबाल कर रहे हैं।
1: जी शबर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया दीवान खाना में, हम आपको खुश आमदीद कहते हैं। शुरू में मैं आपसे ये पूछूंगा कि जापान आपका कैसे आना हुआ और कब आना हुआ?
3: जी, सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपने मदद किया। मैं

0: मास्टर स्टूडेंट था और हायर एजुकेशन के लिए डिफरेंट कंट्री को टारगेट किया हुआ था कि इस कंट्री में जाऊंगा और उस कंट्री में। जापान जो था बड़ा मतलब एक तरह से कम्पिटिटिव एग्ज़ाम था जिसके ज़रिए मैं आया इधर। मैं उस पे काफ़ी ट्राई की, एक साल पहले भी की थी, दूसरे साल जब किया तो लकीली मेरा एडमिशन हो गया इधर जापान में।
1: सब्जेक्ट आपका कौन सा था और एग्ज़ाम कौन सा था जिसके लिए आप तैयारी कर रहे थे?
0: मेरी एजुकेशन तो एग्रीकल्चर के रिलेटेड और उसमें सॉइल साइंस से मेजर है, मैक्स स्कॉलरशिप है जिसके थ्रू हम आए थे। उसका एक इंटरव्यू होता है और उसके डॉक्यूमेंटेशन होती है, अगर वो क्लियर हो जाए तो देन आप आ सकते हैं और स्कॉलरशिप पे।
1: तो स्कॉलरशिप में आपको क्या क्या चीज़ें हुकूमत की तरफ से मिलती हैं या मेरे ख्याल में हुकूमत जापान की तरफ से?
0: जी जी ऐसे ही, ये फुली फंडेड स्कॉलरशिप है। आपको एक स्टाइपन देते हैं, उसमें आपने सारा अपना लिविंग भी कर सकते हैं और बाकी ट्यूशन फी वो सारी एग्जेम्पशन होती है।
1: अच्छा, तो इस स्कॉलरशिप में यानी कि आपके कोई दबाव नहीं है, आप आसानी से आपके अखराजात पूरे हो जाते हैं स्टाइपन से?
0: हाँ जी बिल्कुल ऐसे ही है, मतलब कि जब वहाँ की इनकम और उस लिहाज से अखराजात भी हैं तो इधर की स्टाइपन वो ऑलरेडी ये सारा कुछ कैलकुलेट करके देते हैं। हाँ ये रिसेंटली एक दो साल में काफ़ी महंगाई हो गई है, उस पर अभी मतलब जितना स्टाइपन है शायद थोड़ा सा मुश्किल होता जा रहा है, लेकिन अभी भी गुजारा कर सकते हैं आप जितना वो स्टाइपन देते हैं ना।
1: अच्छा, तो आप उसमें अपीयर हुए और उसमें कामयाब हुए, उसके बाद जापान आए, तो कहाँ पे दाखला लिया और क्या करना चाह रहे थे, मास्टर्स पीएचडी एमफिल क्या?
0: जी मैं नागासाकी यूनिवर्सिटी में आया था और पीएचडी के लिए।
1: किस साल की बात है
0: ये? 2021 2021 में।
1: अच्छा,
0: मैं जब किसी दोस्त को बताता कि मैं नागासाकी जाने लगूं तो पहला सवाल ये होता कि वो जिधर एटम बम गिरा था
1: जी, पाकिस्तान में ये दो शहर बहुत मशहूर
0: हिरोशिमा नागासाकी,
1: सही?
0: तो मैं कहता हाँ उधर जाने लगूं, वो कहते हैं बच के रहना उधर अभी भी रेज हैं, वो पाकिस्तान में अभी तक है ना
1: मिसकंसेप्शन है जी, बिल्कुल इस वाले से, सही।
0: तो जैसे मैं जापान में आया तो नागासाकी में देखा बिल्कुल वो उस तरह से रेज वगैरह का कुछ नहीं, रेज है ही खत्म हो गई है, तो बाकी पानी भी क्लियर है, हर चीज़ क्लियर है और बोर्ड बहुत पुरसकून जगह नागासाकी है।
1: तो पाकिस्तान में आप कहाँ से हैं?
0: मैं गुजरांवाला से ताल्लुक़ रखता हूँ।
1: अच्छा, तो यानी पहलवानों और लजीज खानों के लिए मशहूर है।
0: जी जी ऐसे।
1: तो कैसा लगा जापान आके? पहलवान तो शायद आपको नज़र आएंगे, तो लजीज खानों के बारे में बताइए, क्या फ़र्क आपने फील किया, इंप्रेशन क्या था आपका?
0: खानों का एक तो हमारा वो थोड़ा डाइटरी रिस्ट्रिक्शन भी है उस लिहाज से, और दूसरा वाकियन अभी तक खानों को मिस ही करते हैं। पाकिस्तान के खाने और तरह से हैं और जापान के खाने बिल्कुल डिफरेंट किस्म के।
1: क्या फ़र्क है मसलन?
0: मसलन हम
1: मसाले मिर्च,
0: मसाले मिर्च और हैवी चीज़ें फुल घी डाल के और तड़का लगा के वो चीज़ें खाना पसंद करते हैं। जापान में हेल्दी तो हैं लेकिन उस तरह से मसाले मिर्च नहीं है।
1: अच्छा,
0: तो इस वजह से मज़ा नहीं आता।
1: तो जापान का इंतखाब आपने क्यों किया? आप यूरोप जा सकते थे, आप अमेरिका जा सकते थे, आप पाकिस्तान में ही कर सकते थे, एक एग्रीकल्चर कंट्री है, तो आपने पीएचडी के लिए जापान का इंतखाब क्यों किया?
0: मैं फुली फंडेड स्कॉलरशिप देख रहा था तो एशिया में मैं ज़्यादा देख रहा था और जापान एक लिहाज से बिल्कुल एशिया का समझ लें ऐसी जगह के सारे यहाँ आना पसंद करते हैं। मैं जब एडमिशन हो भी चुका था तब भी मैं किसी को बताता कि मैं जापान जाने लगूँ तो एक अलग तरह से वो मुझे देखते इज़्ज़त देते कि वो जापान, जापान का एक नाम है सिविलाइजेशन के लिहाज से और तरक्की के लिहाज से, तो इस वजह से मेरा भी ज़्यादा दिल यही था कि मैं जापान जाऊँ।
1: पाकिस्तान में आप तकरीबन 16 साल पढ़ते रहे, फिर उसके बाद आप यहाँ पे आए, तो क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ तालीमी निज़ाम में, जो तालीम का तरीका है, आपके ख्याल में क्या वजह है कि जापान आगे निकल रहा है मुख्तलिफ फील्ड्स में और एग्रीकल्चर भी इज़ आई थिंक नो एक्सेप्शन?
0: जी जी ऐसे ही है, मेन वजह यही है कि हमारा तालीमी निज़ाम जो पाकिस्तान में है उसमें ज़्यादातर थोरेटिकल चीज़ें हैं और सिर्फ हम वही पुराने अंदाज में लेके चल रहे हैं, वही नोट्स हैं और पुराने इंस्ट्रूमेंट हैं, चलते हैं नहीं चलते, मतलब हम बहुत रिसर्च के लिहाज से उस तरह से काम नहीं कर रहे और उसकी उस तरह पब्लिकेशन भी नहीं होती। और लेकिन जापान उसके लिहाज से मतलब बहुत तरक्की याफ्ता है और ये बहुत ज़्यादा रिसर्च पे फोकस करते हैं और इनकी रिसर्च दुनिया में मानी जाती है, बहुत स्लो अंदाज में, स्लो एंड स्टेडी अंदाज में, लेकिन उसको बेहतरीन अंदाज में वो रिसर्च आउटकम लेके आते हैं, इस वजह से शायद
1: जल्दी नहीं करते।
0: जल्दी नहीं करते
1: अच्छा,
0: हम शायद थोड़े से शॉर्टकट भी ले लेते हैं।

0: कि जल्दी आउटकम आए और बस पब्लिकेशन ले लें, लेकिन जापान में बहुत स्लो लेके चलते हैं और उसका एक एक पॉइंट को देखते हैं कि इधर क्या बेहतरी है और इसको किस तरह करें, और फिर जो आउटकम निकलती है और वो वाकयान जो है वो दुनिया में सभी में मानी जाती है कि ये जापान में काम हुआ है।
1: सही, तो आपका रिसर्च किस हवाले से था?
0: मेरे ही रिसर्च इन्वायरमेंटल साइंस में जो है वो सॉइल में जो हैवी मेटल कंटेमिनेशन हो जाती है, ये रिसेंटली जो इंडस्ट्रीज़ हैं इनकी वजह से, दूसरे जो वेस्ट वगैरह है उसकी वजह से मिट्टी में और पानी में
1: आलूदगी होती है।
0: आलूदगी होती जा रही है,
1: अच्छा,
0: तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं? अगर आलूदगी वाली ज़मीन पे अगर हम पैदावार कर लें, वो अब कंटेमिनेशन उस फूड में आ सकती है,
1: सही,
0: अगर वो हम खाएंगे तो वो हमारे जिस्म तक आ जाएगी और उसकी बहुत कार्सिनोजेनिक मतलब बहुत सीवियर डिजीजेज है, तो उसको किस तरह हम ओवरकम कर सकते हैं, इसके हवाले से मेरी रिसर्च थी पीएचडी में।
1: अच्छा, गुजरांवाला मेरे ख्याल में इंडस्ट्रियलाइजेशन काफ़ी ज़्यादा है और ये मसला वहाँ पे भी होगा। क्या समझते हैं आपके इस जो इस रिसर्च है, इससे उसमें कोई फ़ायदा होगा, आप उसको यूटिलाइज करेंगे एक्चुअल ग्राउंड पे?
0: गुजरांवाला, फैसलाबाद, ये बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल एरिया है, और जैसे जापान में एक तरह से आलूदगी जो इंडस्ट्री से निकलती है उसको कंट्रोल किया जाता है, पाकिस्तान में थोड़ा सा उस तरह से मैनेज नहीं किया जाता, इस वजह से पानी बहुत ज़्यादा आलूदगी हो रही है अभी, आर्सेनिक का बहुत ज़्यादा मसला है उधर पानी का, और फिर वो पानी जो मिट्टी में जाता है वो मिट्टी भी आलूदगी हो जाती है। ये रिसर्च तो बहुत ज़रूरी है, इंशाल्लाह अगर मुझे मौका मिला अगर उधर काम करने का तो इसको जो मैंने यहाँ रिसर्च की है पढ़े उसको उधर करेंगे,
1: इस्तेमाल में लाएंगे और
0: इस्तेमाल में
1: लोगों को
0: लाएंगे।
1: इससे फ़ायदा होगा
0: जी
1: डेफिनेटली। अच्छा, तो अब अगर आप वापस जाते हैं, लेट सपोज़ आप इसी काम के लिए जाते हैं जापान से, अगर मैं आपसे पूछूं कि आप किस चीज़ को मिस करेंगे जापान का, या कौन सी चीज़ें हैं जो आपको याद आएंगी वहाँ पे?
0: सफाई के लिहाज से मतलब जापान काफ़ी ज़्यादा साफ़ है, रोड हर जगह मतलब टॉयलेट, इवन टॉयलेट भी बहुत साफ़ है, और दूसरा डिसिप्लिन लाइफ है बहुत ज़्यादा, हम उधर थोड़ी सी सुस्ती कर जाते हैं काफ़ी चीज़ों में, सच्चाई ईमानदारी ये वैसे जापान मशहूर है, तो ये भी चीज़ें काफ़ी मतलब के मिस करूँगा, क्योंकि उधर थोड़ा सा हमारा रहना सहना बिल्कुल एक डिफरेंट तरह से होता है, इधर बहुत डिसिप्लिन लाइफ है, हर चीज़ हर काम एक वक्त पे हो रहा है।
1: तो शुरू में कोई मुश्किलात आपको पेश आई हैं, जैसे कि हर चीज़ वक्त पे? मुझे तो काफ़ी फील हुआ था, और डिसिप्लिन भी थोड़ा सा भारी गुजरता है बंदा, एक साल
0: हाँ
1: तो लेता है।
0: यस,
1: तो आपको कोई ऐसी मुश्किलात पेश आई थी?
0: मैं जिस टाइम आया था 2021 में, तो उस टाइम ये कोरोना का अभी एंड ही हो रहा था, मेरी शायद फर्स्ट फ्लाइट थी जो इधर लैंड हुई थी, उसके बाद दोबारा वैसे बैन लग गया था।
1: सही सही, ओमिक्रॉन आ गया था मेरे ख्याल में,
0: हाँ
1: शायद उन दिनों की बात।
0: हाँ हाँ वही, मतलब एक ही फ्लाइट आई थी और उसमें मैं आ गया, मुझे प्रोफेसर भी कहते तुम बड़े लकी
1: सही,
0: हो, उससे पहले भी बंद थी और उसके बाद भी 1-2 महीने बंद हो गई थी, तो बहरहाल मैं आया, और पहले तो 14 दिन का इधर क्वारंटाइन था, वो तो मैं चलो अकेला रह लिया, फिर जब नागासाकी गया और मतलब कि बिल्कुल अकेला, उधर पाकिस्तानी भी नहीं था यूनिवर्सिटी में मेरे, ना पहले पहले बहुत मुश्किल हुआ, मतलब एक तनहा ज़िंदगी, और पाकिस्तान थोड़ी सी सोशल लाइफ है, यहाँ तो
1: हर बंदा अपने काम में मगन।
0: मगन है और बहुत प्राइवेट लाइफ, मतलब कोई उस टाइम तो एक फासला बना लेते, चलते भी
1: हाँ, वाकई
0: फासला बना
1: वो भी
0: लेते
1: ज़्यादा
0: थे
1: हो
0: कि
1: जाता है।
0: हाँ
1: सही,
0: वो वक्त तो ऐसे मुझे लगा मैं किधर आ गया हूँ, तो काफ़ी शुरू में डिप्रेशन भी होने लगा, मतलब 1-2 माह मैं बिल्कुल परेशान था कि मैं किधर आ गया हूँ, कोई ख़ास कम्युनिकेशन नहीं है, एक तो लैंग्वेज बहुत
1: तो लैंग्वेज
0: बड़ा
1: सीख पाए या नहीं, इसके बारे में बताइए, जापानी जबान?
0: मैंने कोशिश तो बहुत की, यूनिवर्सिटी में भी क्लासें कुछ लीं, एक N5 लेवल मैं कह सकता हूँ कि मुझे आ गया, मतलब कि बेसिक बहुत बेसिक जो है वो मैं समझ सकता हूँ।
1: तो अभी बहुत सारे जो हमारे लिसनर्स हैं पाकिस्तान में, खासकर स्टूडेंट जो जापान आना चाहते हैं, ख़ास तौर पे जो आपका जो स्कॉलरशिप है, मैक्स का स्कॉलरशिप,
0: जी।
1: इसके थ्रू आना चाहते हैं, जो ताकि वो चाहते हैं कि फ्री में उनको एजुकेशन भी मिल जाए, एक्सपोजर भी हो जाए, तो उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे?
0: मैक्स स्कॉलरशिप जो है वो उसके दो वेज हैं, एक एम्बेसी ट्रैक है एक यूनिवर्सिटी ट्रैक, एम्बेसी ट्रैक जो है ये यही अप्रैल मई में अभी जापान एम्बेसी जो पाकिस्तान में है उनकी वेबसाइट पे वो अनाउंस कर देते हैं, अभी ओपन हो गए, तो सबसे पहले तो उसमें 80% मार्क्स आपके होने चाहिए बैचलर में या मास्टर्स में,
1: सही
0: अगर मास्टर के लिए आ रहे हैं बैचलर में, और अगर पीएचडी के लिए आ रहे हैं तो मास्टर्स में आपके 80+ मार्क्स होने चाहिए। और अगर आप गोल्ड मेडलिस्ट हैं देन तो जापान आपको पक्का ले लेगा,
1: सही
0: मतलब अच्छी प्रोफाइल को पक्का ले लेते हैं। तो उसमें वो कुछ डॉक्यूमेंट हैं वो उसी वेबसाइट पे होंगे, उनको फिल आउट करके आपने इस्लामाबाद भेज रहे होते हैं एम्बेसी को, फिर उसमें वो रिक्रूट करते हैं और कुछ कुछ शॉर्टलिस्ट करते हैं और फिर कुछ का इंटरव्यू या टेस्ट लेते हैं और उसके बाद वो सिलेक्ट हो जाता है और फिर आप यूनिवर्सिटी आ जाते हैं। ये है एम्बेसी ट्रैक जो है स्कॉलरशिप मैक्स्ड, और दूसरा
1: ये एक तरीका है।
0: ये एक
1: अच्छा, अब
0: तरीका
1: एक
0: है,
1: दूसरा तरीका आप बता
0: अब
1: रहे हैं।
0: दूसरा तरीका है
1: जी
0: वो भी मैक्स्ड ही है लेकिन वो यूनिवर्सिटी ट्रैक है।
1: अच्छा
0: उसमें आप अपने रिलेटेड जो यूनिवर्सिटी हैं उनको ओपन करते हैं और उनकी फैकल्टी में जाके, उनकी फैकल्टी में अपने रिलेटेड जो रिसर्च प्रोफेसर्स हैं उनको कांटेक्ट करते हैं और उनसे कहते हैं कि मैं इस तरह से अपनी प्रोफाइल उन्हें शो करवाते हैं, अपनी सीवी उन्हें भेजते हैं कि मैं आपकी लैब में काम करना चाहता हूँ। अगर वो ओके कर देते हैं फिर वो यूनिवर्सिटी जो है आपसे कॉन्टेक्ट करती है और डॉक्यूमेंटेशन लेती है और फिर आपका एक इंटरव्यू भी होता है और उसके
1: अच्छा
0: बाद आप सिलेक्ट हो जाते हैं और जापान
1: सही
0: आते हैं।
1: सही सही सही। अच्छा, तो अब यहाँ NHK में आप ट्रांसलेटर हैं, तो इससे पहले भी ज़ाहिर है आप ख़बरें तो पढ़ते होंगे, तो यहाँ बेखबरों का आपका तर्जुमा की आपकी ज़िम्मेदारी है।
0: जी,
1: क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ जो दीगर मीडिया हैं और पाकिस्तानी और ये जो NHK हमारा है, इसकी ख़बरों में क्या फ़र्क आपको महसूस हुआ?
0: पाकिस्तानी मीडिया में थोड़ा जज्बाती न्यूज़ ज़्यादा देते हैं, मतलब हेडलाइंस पे ज़्यादा वो होता है उनका फुल जोर कि ये किसी तरह लोगों की अट्रैक्शन लें, लेकिन NHK में ये ज़्यादा न्यूज़ पे और उसका कंटेंट पूरा देते हैं कि ये वाक़या कब और कहाँ कैसे हुआ, उसका नीचे फुल डिटेल भी होती है ताकि हमें दोबारा रिमाइंड ना करना पड़े। तो वो एक ही न्यूज़ में आप इजीली समझ सकते हैं कि इस न्यूज़ का बैकग्राउंड क्या है, पस मंज़र क्या है और ये अभी न्यूज़ क्यों आ रही है।
1: अच्छा, बहुत बहुत शुक्रिया शब्बर साहब दीवान खाना को टाइम देने
0: जी
1: के लिए। हमारे नए ख्वाहिशात आपके साथ हैं। थैंक यू सो मच।
0: बहुत शुक्रिया आपका।
2: जी सामिन, सैयद शब्बर हुसैन शाह साहब की बातें हमने सुनी। आज गुलुकार गन होशिनो का गीत सोजो उनके नाम करेंगे। और आपको इस गाने की तफसील बताते चलें कि ये गाना निंटेंडो गेम से मंसूब है जो सुपर मारियो ब्रदर्स की 35वीं सालगिरह के मौके पर गाया गया।
3: गेन होशिनो 1981 में पैदा हुए सैतामा प्रिफेक्चर से ताल्लुक रखने वाले गेन होशिनो अदाकार, मौसीकार और मुसन्निफ के तौर पर सरगर्म हैं।
2: उन्होंने NHK की मॉर्निंग ड्रामा सीरीज हम बुन आओई के लिए थीम सॉन्ग भी कंपोज किया।
1: हमारे जापानी अमले की रुकन मोहतरमा उराता ने ये गाना क्यों मुंतखब किया? इसके जवाब में उन्होंने बताया कि लफ्ज सोजो का मतलब है तख्लीक। वो कहती हैं कि मैंने ये गाना इसलिए मुंतखब किया क्योंकि मुझे यकीन है कि नए ट्रांसलेटर सैयद शब्बर हुसैन शाह मुस्तकबिल में शानदार सलाहियतों का मुजाहिरा करेंगे।
3: इस दिलचस्प और मुनफरिद जापानी गीत के जरिए वो नए मुतरजिम को गर्म जोशी से खुश आमदीद जापान का पैगाम देना चाहती हैं। गीत के बोलों में हैं, आइए कुछ तख्लीक करें, आइए कुछ मुनफरिद तख्लीक करें।
2: तो चलिए आइए सुनते हैं।

0: ये NHK World Japan की उर्दू सर्विस है। हमारी ये नशरियात पाकिस्तान में रात 9 बजे और भारत में रात 9:30 पर शॉर्ट वेव्स 9440 किलोहर्ट्ज़ पर सुनी जा सकती हैं।
1: जी सामिन, और अब जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के हवाले से एक बहुत ही खुसूसी ऐलान।
0: जी दोस्तों, हम आइए जापानी बोलें का क्विज सिलसिला आज से शुरू कर रहे हैं, जापानी ज़बानदानी, जिसमें जापानी ज़बान का एक नामुकम्मल जुमला पेश किया जाएगा।
2: इस नामुकम्मल जुमले में खाली छोड़ी गई जगह को आपने पुर करना है और मज़कूरा मिसिंग लफ्ज़ लिखकर हमें रवाना करना है।
1: नामुकम्मल जुमले की तस्वीर हमारे होम पेज पर दीवान खाना के पेज पर मेज़बानों की तस्वीर वाले हिस्से में पोस्ट की जाएगी।
2: दीवान खाना के पेज तक रसाई का तरीका बताते चलें कि आपने खोलना है हमारा पेज nhk.jp/urdu, फिर शोज ऑन डिमांड के उनवान पर जाके दीवान खाना के सफ़े तक पहुँच कर 24 मई के प्रोग्राम की वेबसाइट खोलिए।
0: इस पेज पर क्विज के जुमले वाली तस्वीर नजर आएगी, इसको देखकर अपना जवाब सोचना है और हमें रवाना कर देना है, और दुरुस्त जवाब वाले सामीन यानी क्विज में शरीक होने वाले सामे का नाम हम दीवान खाना में नशर करेंगे।
1: तो 24 मई के शो के सफ़े पर 10 सवाल हैं। हारूसा हाउसु वा डैश डैश डैश,
0: इस इबारत में मौजूद खाली जगह पुर करनी है, क्योंकि नामुकम्मल इबारत यानी के सवाल में सिर्फ हारूसान हाउस वा डैश डैश डैश मौजूद है, लिहाजा बाकी अल्फाज आपने अपने जवाब के तौर पर लिखने हैं।
2: इसके लिए हम आपको इशारा देंगे कि यह हमारे इबारत हमारे होम पेज पर जापानी बोलचाल के प्रोग्राम के कौन से सबक नंबर में है, ताकि आप वहां जाएं, दुरुस्त जवाब तलाश करें। और अभी हमने जो जुमला बताया हारूसा हाउस वा देश देश देश देश, इसका जवाब हमारे होम पेज nhk.jp/urdu पर जापानी बोलचाल के सबक नंबर 1 में मौजूद है।
1: आइए जापानी बोलने के असबाक के मुतल्लिक का सफ़े तक रसाई हासिल करके इस सबक में जवाब तलाश करें।
2: जी सामिन, आप अपना जवाब जापानी या उर्दू रस्म अल-खत में या फिर रोमन हरूफ में लिखकर भेज सकते हैं। सही जवाबात हमारे प्रोग्राम दीवान खाना में पेश किए जाएंगे और क्विज में शरीक होने वाले हर सामे का नाम हम दीवान खाना में शरीक करेंगे, दुरुस्त जवाब वाले सामे का नाम शामिल करेंगे। और अब अपने मेज़बानों को इजाज़त दीजिए।